जय, पितृ देवता की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। सो वी ऑल जॉइन टुगेदर गायत्री मंत्र फाइव टाइम्स फर्स्ट एंड देन वी विल हैव द मंत्र टू डू द हवन फॉर शिव मंत्र। रेडी? ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो

0: ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम स्वाहा। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णगुं शांति स्वाहा।
1: आचमन।
0: ओम सर्व पाप हरम दिव्यम गंगेयं निर्मलम जलम आचमन्यम मयादित्यम गृहाणा परमेश्वर श्री अग्नि देवता स्वाहा देवी सहित धूपम प्रतिघटाम। ओम वनस्पतिर्सोद्भूते गंधान दिव्यो गंधोत्तमम् अर्घ्यासर्व देवानां धूपोऽयं प्रतिहृताम्। ओम ह्रीं श्रीं

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क

0: तम कहा, तुम कहा, हम कहा, ताल कहा, सम कहा, तुम कहा, हम कहा, तेरे कर तुम, ना कर तुम, तेरे कर तुम, ना कर तुम, हम तुम, नता हाथ, की पाता, लता हाथ, पता पाता, मेरा कस करामत,
1: पाते ठीक पाते ठीक

समय की बात है कि कन्हैया ने गोकुला को छोड़ करके और वृंदावन को चला गया। राधे अति दुखी होकर के वो रोती है, कृष्ण लीव्स एंड गोज टू गोकुला, राधा इज वेरी अनहैप्पी एंड शी सेड

0: Thank you very much for joining us, and we'll do it all again tomorrow, the voice there of our Pandit Sivadat. Until we meet again, do enjoy the Guru Purnima, do what is required of you, and always remember, continue to be the best human being that you can. Be grateful to the people and for the people who have educated you in the this walk we call life. Until we meet again tomorrow morning, 5 to 7, seat around to you.
1: और ईश्वर भी उनके आशीषों को काट नहीं सकता. विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है. माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है. वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय.
1: Need a little self-care while you're shopping at the Fabinia Expo? Treat yourself to a relaxing jumpy massage or spa service. Shopping and relaxation all in one stop.

आस को कर लो अंगीकार, दास को हे पाप अविकारी, गुरु जी आया शरण तुम्हारी का।

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: One place, countless options. That's the Fab India Expo in Chaguanas. Get bridal and groom's wear, jewelry, furniture, footwear, home decor, and much more. Open daily from 11 AM to 9 PM.
2: Well, we dedicate this one especially for Oma Prasad out there in San Fernando. She requested a selection from Tumsa Nahi Dekha. And here it comes just for you, Oma, the title track.

0: आरोग्यं सुखसंपदां आत्मतत्व प्रबोधाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। लक्ष्मी करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां मम शत्रु विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: The gentle lull that comes when the sun is nearly set and night readies to settle.

आदिशक्ति माता की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सनातन धर्म की जय। सबको सीताराम भैया, आप लोग अपना आसन लीजिए। बोलो श्री गजानंद स्वामी की जय। At this time, we want to say very special welcome to Babaji and all you wonderful people for being present here. And we will get ourselves ready for our katha by preparing in Vandana to Ganesh Ji, Saraswati Mata, Guru, and then we honor the book of the Mahapuran, and after that, we'll have our katha. Balo Sri Adi Shakti Mata ki jai.